राग गौड़ी पूर्वी विच ऋषभ धैवत कोमल दोवें मध्यम ते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग की जाति संपूर्ण वादी ऋषभ संवादी पंचम अते समा शाम का पहला पैर है। इस राग विच कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई शब्द का गायन कर रहे हैं प्रिंसिपल शमशेर सिंह क्रीर।

अपने सह दे नाल अपने प्रभु दे नाल रथे गए पाव जिन्ना ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया वो सारिया नू चंगे लगते ने क्यों जो हर का प्यारा सो सबना का

दिवस है अभियान शब्द जदों ही आप सुनी ओदे एक एक पंक्ति वाल ध्यान देंगे ओदी विचार हिरदे विच वसाइए ता मन जेड़ा है ओ फिर पटकेगा नहीं। हर इंसान परमेश्वर की निगाह विच है क्योंकि परमेश्वर सारे दे नाल वसदा है ओदी निगाह तों कोई दूर

पत्नी और पति का रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हां विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे होमे और माया आ जावे उथों प्यार उठ जांदा है। और होमे तां आंदी है जद इंसान परमेश्वर नूं भुला दे। गुरु नानक साहब गुरु होके गुरु होण दा मन विच माण नहीं, कहंदे ने ऐ परमेश्वर मैं तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दी रास दित्ती है। जिस तरह कोई सेठ अपने नौकर नूं दुकान ते बठावे ते आखे लै तू हुण सौदा वेच, ते साहिब जी कहंदे ने अकाल पुरख मैं भी तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दित्ता है कि ऐ नानक तू मेरा नाम दुनिया विच वंड, भाव मेरा नाम लोकां नूं जपा और मेरे नाल जोड़। ते साहिब जी कह रहे ने अकाल पुरख मैं तेरा नौकर हां, मैं तेरा गुलाम हां, मैं तेरे नाम दा टंडोरा दुनिया नूं दे रहा तां कि लोग सुखी हो सकन, पापां तों झूठ तों ओ बच सकन।

मेहता कालू जी उठ के खड़े हो गए, बेबे नानकी और नाल उन्हां दे पति जयराम जी वो भी आ रहे ने। बेबे नानकी वेड़े विच दाखल होए और भज के अपने पिता मेहता कालू से गल लगे। अखां विच अश्रू पै वगदे ने ते कहन लगे, पिता जी मेरा वीर नहीं आया। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए असा तो यह सोचा कि जे तू आई है ते नानक भी जरूर आवेगा। इतने में भाई अजय राम जी भी अंदर आए। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए जा अपनी मां नू मिल, उन्नू भी दिलासा दे, जिदियां अखां विचों ते हुण अथरू भी सुक

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो। बड़ी वैराग विच है धन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तू थले उतरे भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते। पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लईआं कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन ते नहीं हो सकदा। सात संगत ए इतिहास ए कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ए कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ता कि साढ़े मना विच साढ़े हिरदे विच प्यार होवे। जे साढ़े हिरदे विच प्यार होवेगा साढ़े घर विच भी प्यार होवेगा। जिदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा।

दुनिया विच जा रहे हैं बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना सचखंड बना ए कथा कहानियां सुननिया अपने महापुरुषां दे जीवन वाल देखना है ओ पति भी ने पुत्र भी ने ओ भरा भी ने ओ सज्जन मित्र भी ने ओ गुरु भी ने ओ पीर भी ने ओना ने दुनिया नू प्यार वंडिया ते आओ ये कथा कहानियां सुन के अस भी अपने मना विच प्यार साडे मन विच प्यार होवेगा अपने घरदियां नू प्यार देंगे लोकां नू प्यार देंगे ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

पता नाम तो किस तरह कुर्बान हुई दे, पर तेरा ही शब्द पढ़ के अपने मन की भावना पे प्रगट करने हैं कि असि भी तेरे तो वारी जाने हैं, तेरे तो कुर्बान जाने हैं, तेरे नाम तो कुर्बान जाने हैं, क्योंकि तेरे नाम दे विच

एक अख दे पलक विच कुछ दा कुछ हो जाता है। मनुख केडियां पक्कियां बनी बैठा है, समान सौ बरस का पल की खबर रही। इसे लई धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी कह रही है, हर जपद्या खिन ढिल ना कीजे मेरी जिंदड़ी, मत के जापे शाह आवे के ना आवे राम। हर जपद्या ढिल ना कर, इसे लई महापुरख क्या करदे सी भाई, अमृत वेले जाग के इशनान करके पहला नितनेम कर लिया करो, पहला गुरु दा कम कर लै। पता नहीं आउन वाले श्वास जिना दी तू उड़ीक विच हैं, ओ आउनगे के ना आउनगे। इसलिए ए संसार ता ऐसा है, इथे दुनिया मतलब दी है, इथे झूठ दा पसार है। तू नेहो लाई बैठे तेनू आपे ही सोझी हो जावेगी के जिना लई तू की कुछ नहीं कीता, पर केड़ा भाई तेरा बनेगा, किसे ने तेरा नहीं बनना। इसलिए असी एक दम दे मालक हां जो हजूर बख्शिश कर दे।

सज्जन कर दिता है। तू किन्या नू तारिया है गिनती नहीं कीती जा सकती, तू किड्या ते बख्शिश कीती है ए सतगुरु।

मैनू लगदा है आपां गरीब लोक हां ते गुरु नानक अपने घर तां नहीं दे आंदे। मैनू लगदा है आपां नीवीं जात दे हां ते गुरु नानक अपने घर तां नहीं दे आंदे। सतसंगियो मरदानी ने सुनिया ते कन्नां विच उंगलां दे लईआं, भलीए ऐ की बोल रही हां, मेरा गुरु नानक गरीब नवाज है। आ चंद्रमा देखदी है सारे संसार नू रोशनी देंदा है, इस चंद्रमे ने कदी नहीं ए देखिया भी ए घर चोर दा है, इथे घट रोशनी देवां, ए घर साध दा है इथे वध रोशनी देवां। बेशक कोई घर चोर दा होवे कोई साध दा होवे, ए चंद्रमा सारिआं नू रोशनी देंदा है। किसी तरह मेरा गुरु नानक है, सारिआं ते रहमत करदा है, सब नू गले नाल ला लैंदा है। अगों घर वाली आखण लगी, स्वामी ऐ ते ठीक है, ए चंद्रमा सारे संसार नू रोशनी देंदा है, पर ए चंद्रमा कदी किसे दे बेड़े थोड़ी उतरिया है, कदी किसे दे बेड़े थोड़ी उतरिया है ए चंद्रमा। मैं ते तां जान दी जे तन गुरु नानक पातशाह साडे वर्गे गरीबां दे घर आके भी भोजन छक जांदे। सच जाणू मरदानी दे अखां विचों हंझू किराए, उठ के तुर पए, हुणे जांदा हां गुरु नानक नूं घरों बुला के लियांदा, ते तू मेरे आण तक प्रशादा तैयार करके रखी। मन दे विच

अज धन गुरु नानक पातशाह की बोले। आखन लगे मरदानिया भुख बड़ी लगी सी कि मैं सोचया अज दा प्रशादा तेरे घर जाके छकदे हां, तेरे घर चला हां प्रशादा छकण वास्ते। मरदाने दे अखां विचों हंजुआं दा मीह बर आया। सतगुरां दे चरण पकड़ ले, हंजुआं नाल धो दिते। सतगुरु कन्ना नाल बड़ा सुनिया सी तू गरीब नवाज, अज अखां दे नाल तक लिया तू ते सची गरीब नवाज है। मेरे गरीब दे घर चला, मैं तुहानू बुलाण चला सी। सतगुरां ने आखिया मरदानिया की लोड़ है, मैं ते आपे ही तेरे घर नू टुरिया आ रहा हां। अगे अगे मरदाना ते पिछे बाबा नानक। घर दा दरवाजा जाके खड़काया, घरवाली ने दरवाजा खोलिया ते देख के हैरान हो गई। किथे बाबे नानक दा घर ते किथे साडा घर, एडी छेती गुरु नानक नू घरों भी लैके आ गए ने। अज पहली बार बाबे नानक ने अपनी पवित्र चरण मरदाने दे बेड़े विच पाए ने। ते जदों बाबा नानक मरदाने दे बेड़े विच खलोता है ना, मरदाने दे अखां विचों प्यार दे हंझू नहीं किरदे। बाबे नू देख के अपने घर खुशी विच रोई जांदा है। घरवाली अखां मल मल के देख रही है, एडी छेती घरों भी लै आए ते अज मरदानी ने बैराग विच भिज के हंजू केर के अपनी घरवाली नू की आखिया, ऐ पलिए आ देख लै तू किड्डे उलांभे देंदी सी, किड्डे उलांभे देंदी सी वी चंद्रमा कसी कदी किसे दे बेड़े नी उतरदा, ते आ तक लै अज चंद्रमा तेरे वेड़े उतर आया है। अपनिया अखां नाल देख लै किन्ने ताने मैनू मारदी सी, किड्डे मीणे मारदी सी, ओ तक लै अज चंद्रमा तेरे वेड़े उतर आया है। अज बाबा नानक नेमतां दा मीह वरसाण वास्ते आप चल के आए ने। ऐ गुरसिखा तेरी भावना बन जावे, तेरी श्रद्धा बन जावे, गुरु नानक ते रहमत करन वास्ते पाप आ जांदा है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा आनंद सिंह जी नानक सरवाले सोझी देंदे सन, गुरसिखा इस दरबार विचों की नहीं मिलदा, हिरदे विच जात मार, तियां पुत्र मंगे वो भी मिल गए, महल माड़ियां मंगियां वो भी मिल गईयां, इस सतगुरां कोलों तू धन दौलत मंगिया वो भी मिल गया, ऐ पलिया जे किते गुरु नानक मंगिया हुंदा वो भी मिल जाना सी। आ गुरु नानक मंगिया हुंदा ना वो भी मिल जाना सी। जिन्हां ने गुरु नानक मंगिया है उन्हां नू गुरु नानक घर आके मिलिया है।

दासी नू आखिया जा गुरु नानक नू उठाल ते प्रशादा छक लवे। अज दासी गुरु नानक नू उठालन वास्ते अंदर गई है। मन दे विच की आया मना बाबे नानक दी चरण तूड़ी नू बड़े बड़े राजे लोचदे ने। तेनू अज मौका मिलिया है ते पढ़ लै चोलियां। अपने दोनों ही हाथ बाबे नानक दे चरणा नू तलियां नू लाए ते अपने मथे ते ला ले। ज्यों ही बाबे नानक दे चरणा दी तूड़ी मथे ते लाई की बख्शां होईयां इस दासी नू लोक पर

0: जी का खालसा
1: राग सुवी गुरु रामदास प्रोसीडिंग फोर्थ इनटू द फर्स्ट नप्चुअल राउंड द लॉर्ड प्रेजेंट्स बिफोर यू हिज इंस्ट्रक्शन फॉर द डेली ड्यूटीज ऑफ मैरिटल लाइफ इट इज नॉट इनफ टू रिलेट टू द वेदास और ब्रह्मा यू मस्ट बी कॉन्स्टेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ योर राइटियस ड्यूटी दस द एरर्स ऑफ द पास्ट शैल बी वॉश्ड अवे बी कन्फर्म्ड इन राइटियसनेस एंड रिपीट द लॉर्ड्स नेम The practice of the name has been urged in the Simritis as well. Reflect upon the true Guru who is ever perfect, and all your sins and errors will leave you. By the greatest good fortune, the mind is filled with bliss, and thoughts of the Lord are soothing to the mind. Slave Nanak proclaims that in this first round, the marriage ceremony has begun.

श्री वाहे गुरु साहिब जी। हर दू जुड़ी लाव सत गुर पुरख मिलाया बलराम जियो। निरभाव पै मन होए हो मैं मेल गुवाया बलराम जियो।

लक्षण बदल गए, सुलक्षणे हो गए, शुभ लक्षण हो गए। लक्षण कहिंदे ने जो कुछ नजर आउंदा, मनुख दी अंदर दी रहनी जिस वेले बाहर आ जाती है लक्षण कहाउंदी। सतगुरु क्योंकि मनुख दी रहनी सुधार देंदे ने, इस करके जबान मिठी हो गई लक्षण चंगा, चाल ठीक हो गई करते पुरख ताल विवाया, जिंदगी ताल विच आ गई, बेताली जिंदगी ताल विच आ गई, चाल ठीक हो गई। और एक कहने लक्षण जेड़े ने रफ्तार दस्तार गुफ्तार, यही तो गल्लां होंदियां ने जिन्हां तो बंदा पछाणिया जाता। पग किहो जी बनदा है, भाव इस नूं अपने सजन सजाउण दा ख्याल भी है कि नहीं। और यही वजह है कि लोग तां कहिंदे ने पग बननी, लेकिन गुरु का सिख कहिंदा दस्तार सजाउणी है, क्योंकि इहनूं बड़ा ख्याल है कि मेरे सजन दा सवाल है, मैं सजिया सजाया गया ते सज के रहना मेरा काम। दस्तार तो पता लगदा है इस बंदे दी रहनी बहनी की है, भाव वस्त्र पाउण तो रहनी बहनी तो, मनुख दे अंदर दी सफाई दा ते अपने आप नूं बना के रखण दी रुचि दा पता लगदा, चाल तो पता लगदा है इहनूं तुरना आउंदा है, चाल तो ही चाल चलन दा भी पता लगदा, ते गुफ्तार तो जबान तो बोलण तो भी पता लगदा है इस दे अंदर की है। जो जीए होए सो उगवे, जबान तो उही निकलेगा जो अंदर है, अंदर बाणी है ते मुंह बाणी निकलेगी, अंदर प्यार है ते मुंह प्यार निकलेगा, अंदर नफरत है ते मुंह गाला निकलेगी। सतगुरु की कृपा दे नाल मनुख दे लक्षण बदलते, पर उदों बदलते जदों गुरु के मार्ग पै जाए।

परम सत्कार को शासन। सतगुरु जी, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, इस पावन शब्द दे विच उस परमात्मा दे नाम दे सिफत करदे हन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, सर्व रोग का औखद नाम, सारे रोगां दा दारू वाहेगुरु दा नाम है। पर ए नाम दा दारू उन्हां नूं मिलदा है जिहड़े नाम नाल जुड़दे हन। अरदास करदे हां, हुण अरदास कीती ते हुणे ही मन विच ख्याल आ जांदा जो हुणे कीता हुणे मिल जावे। अरदास कीती ते नाल ही फल दी इच्छा, लेकिन कुछ मन जुड़े, कोई बाणी दा शब्द मन दे अंदर वसे, हुण दवाई दा असर भी ताही हुंदा है ना जे दवाई खाईए। दवाई लैके आ गए, डाक्टर कोल गए, डाक्टर ने दस दिता तेनू ए बीमारी है, ए दवाई लै इस नू खा आराम आ जाएगा। डाक्टर कोल भी चले गए, अपने आप नू दिखा भी दिता, दवाई भी खरीद ली, घर आ गए, दवाई लिया के बारी विच रख दिती, आप मंजे ते लम्मे पै गए। कोई हाल पुछन आया, की हाल है, ते मंजी ते पिया लम्मा बंदा ए आखे कि कोई फर्क नहीं पिया। डाक्टर कोल भी गया, डाक्टर ने दवाई भी दिती पर आराम कोई नहीं आया। हुण पुछे ए, दवाई ते खाधी नहीं, आराम कित्थों आवेगा? आखो सतनाम श्री वाहे। गुरु घर ते आए, अरदास भी कीती, करवाई भी, लेकिन उपदेश ते मन विच वसाया ही कोई नहीं, ती असर किवें होवेगा? आखो सतनाम श्री वाहे। बाणी नाल ते मन जोड़िया ही नहीं, ते दुख किवें दूर होवे? दवाई खाधे बगैर आराम नहीं, खावांगे ते आराम आवेगा, ते जे बाणी मन विच वसेगी ते ताही दुखां दा नाश होवेगा। इधर अरदास कीती ते नाल ही सोचिया बस हुण सब कुछ मिल जाए, ये सोच बड़ी माड़ी है। अरदास गुरु सुनदा है, पर घटो घट सानू ए ते चाहिदा है ना कि जिद कोल कुछ लैना है उहदे नाल मन ते जोड़ीए, उहदी बाणी ते मन विच वसाईए। आम लोकी ये सोचदे ने, तीर्थ यात्रा ते जाओ, एक वारी इशनान कर लो ते सारे पाप खत्म हो जांदे, पर गुरु साहिब जी कहंदे ने नहीं, मिले जे तीर्थ नातिया डड्डा जलवासी। जे तीर्थ ते नहाण दे नाल ही सारा कुछ मिल जांदा, फिर मच्छियां डड्डू जिहड़े पानी विच रहिंदे ने इह मुक्त क्यों ना हो गए? सानू तीर्थां ते जाण दा ते पता है, पर जाना किस तरह है इह नहीं पता, नहाना किस तरह है इह भी नहीं पता। साहिब जी उपदेश करदे हन, काया अंदर अमृत सर साचा,
काया कहते ने शरीर एक अमृतसर इस धरती ते है पंजाब दे विच एक अमृतसर साडे शरीर दे अंदर है सर कहते ने सरोवर नू साहब जी कहते ने काया अंदर अमृतसर साचा मन नावे पाए सुभाई है नाना किस तरह शरीर पानी विच नावे मन बाणी विच नावे मन नावे जे मन नहीं नाता भाव मन बाणी नाल नहीं जुड़िया ते किसे भी तीर्थ ते जाके इशनान कर लो ओदा कोई लाभ नहीं गल ते मन दी है मन नावे पाए सुभाई है शरीर पानी विच नावे मन बाणी विच ते फिर असर होवेगा तो सतगुरु जी उपदेश करदे ने ओदा नाम दुखां नूं दूर करन वाला है पर जिस तरह दवाई खाते बगैर आराम नहीं इसे तरह जदों तक नाम मन विच नहीं वसदा उदों तक दुखां दा नाश नहीं हुंदा ते जिहड़े नाम नाल मन जोड़ लैणगे उन्हां दे दुखां दा नाश होवेगा आओ एक बारी करो सारी रसना पवित्र

वाणी सवाल है और जवाब है। दुखां नूं दूर करन वाला नाम है पर किस तरह, आठ पहर आराधिए, अठे पहर उहदी आराधना करिए, उहदे नाल मन जोड़िए ते दुखां दा नाश होवेगा। डाक्टर भी कह दिंदा है ना, दवाई ते दित्ती है, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ जिस दिन अठवें पातशाह गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज ने इस संसार ते अवतार लिया। आओ सारे प्यार नाल एक वारी जपो जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कितनी श्रद्धा भावना दे नाल आप लिखते हैं, श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। जिन्हां नूं देखण दे नाल ही दुखां दा नाश हो जांदा है। अठवें बाला प्रीतम गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज गुरुगद्दी ते बैठे, संगतां दे सद्दे ते गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज दिल्ली वाल चले। दिल्ली जांदे होए कई जगह ठहर दे संगतां नूं उपदेश करदे। हरियाणे दे विच पंजोखड़ा नाम दा एक स्थान है जिथे गुरु हर कृष्ण साहब जी आके ठहरे। बड़ी बड़ी दूरों संगतां आन लगियां। इसे पंजोखड़े जिते होर संगता आईया, एक लाल चंद नाम दा पंडित भी आया। पंजोखड़ा जिते गुरु ने चरण पाए ते पंजोखड़ा साहब बन गया। आखो सतनाम श्री वाहे। लाल चंद दर्शन करन आया, गुरु हर कृष्ण साहब नो देखे यार।

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते बना।

जन तेउ मुक्त भय। चरण बदक हे प्रभु तेरे पैरां विच तीर मारन वाला ओ शिकारी भी तर गया, गनका भी तर गई, कुबजा मालन भी तर गई, मेरे ते भी नजरे अनायत कर। चरण बदक जन

भगती कर, उनु याद कर। परमेश्वर यारा दिए जिंदु होइए पदस पुनीता, बाहर चलिया करन तप। पांच साल दा छोटा जिया बच्चा कहंदे ने, शत्रु कहंदे ने जे मालिक नु मिलना ही ते बच्चे वर्गा हो जा। एदे विच को मेर तेर नहीं, कदे बच्चे ने किसे दूजे बच्चे नु पुछे, छोटे छोटे क्लास विच पढ़दे ने, अजकल ते ताइया ताइया तिना तिना सालां दे दाखल करवा दिते। कदे किसे दूजे धर्म दे बच्चे नु किसे ने पुछया भी तेरा धर्म केड़ा है, तेरी जात केड़ी है, तेरी गोत केड़ी है। ना आपस विच प्यार नाल हसदे ने खेड़दे ने। सतगुरु कहंदे ने जे रब नु मिलना ही ते बच्चे वर्गा पूंजा, ये बड़ा भोला है, बड़ा चंगा है। पांच साल का ध्रुव तुर

सुता नहीं क्योंकि मेरे कम ऐसे फाही सुरत मलूकी वे हों ठगवाड़ा ठगी दे। गुरु नानक सच्चे पातशाह श्री राग महला पहला सानू समझाउण दा यतन

आपके उदय हैं। तानु गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह तो शहनशाहों का शहनशाह है, तेरे समान संसार

चोली किसे ने नहीं पड़ी। इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जांदी, ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर के जांदा है। सत सहित बोलो श्री। इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह।

देख रहा पता गुरु गोविंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोविंद सिंह। धन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरी वर्गी कोई तेग नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया का दिलों का हाल जानता है, क्योंकि तू अंतरजामी है। इस वास्ते घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की फिर पछाण। देग रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज का मालक है, संसार का मालक है, और अकाल पुरख वाहेगुरु दे पाणी नू मनन वाला। सात सगत बोलो श्री, क्योंकि तेरे जैसा संसार ते और कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है, और तू शुरवीर भी है। भगत एडा है कि जदों आनंदपुर का किला उजड़ गया, पिछे मुगल सेना लगी हुई, 500 दे करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे नाल, ते जाउंदियां जाउंदियां जदों अमृत वेला होया, ते साहब जी ने आख्या भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हन कीर्तन नहीं सुने, ते वेखना भाई अमृत वेला हो गया, आशा दी वार दा समा हो गया, कोई है कीर्तनिया पर सानू कीर्तन सुनाओ। सात सगत बोलो श्री। भाई दया सिंह जी कहन लगे पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है, इस वेले तो कितने दूर निकल जाइए चंगा है, ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे। आख्या हां दया सिंह, कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा का भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल। आख्या फिर अद्धे कीर्तन विच बह जाओ, ते अद्धे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खड़ार दियो सारे हो, जे दुश्मन दल आवे ते उसनू रोक के रखन। कीर्तन आरंभ हो गया, उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती, सिंह लड़ रहे हैं, इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे हैं। सत सगत बोलो श्री। इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति हुई, सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए सुध। साहब जी ने अकाल पुरख दे चरणा विच शीश चुकाया, ताई टांगू ने आके खबर दिती खुफिए ने कि साहब जी आ दुश्मन दल मारो मार करता आ रहा है, ते जेड़े लगभग 250 सिंह अगे मोर्चे ते खिलारे सन सारे शहीद हो गए। सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह दे नैन कटोरे वाग आए, और गरीब निवाज एक कीर्तन दे पिछे 250 सिंह शहीद करा दिता। साहब जी कहन लगे दया सिंह आ बाकी कितने बच गए हैं? आख्या लगभग 250। आख्या ए भी 250 शहीद हो जाते। दया सिंह तू भी शहीद हो जाता, मैं भी शहीद हो जाता, लेकिन असी जो इत्थे बह के अज उस अकाल पुरख दे चरणा दे नाल कीर्तन विच जुड़े हैं, उसकी जड़ी भगती की है, असी ए सौदा सस्ता कीता है। सत सगत बोलो श्री। भगत एडे ते आख्या दानी तेरे वर्गा संसार ते होर कौन है, पिता नु शहीद करा दिता धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने। आप दे उस वेले 9 साल की उम्र सी, हिंदू धर्म की रखिया की खातर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने शहीदी पाई, आनंदपुर का किला उजड़ गया, चार साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी
बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, इन्हां सिखां दे उपरों धर्म दी रक्षा की खातर चारे बच्चे शहीद करा दिते। माता नूं कुर्बान कीता धर्म की खातर, सारा परिवार खेरू खेरू हो गया, आ सारा सरबंस दान कर दिता, तेरे वर्गा संसार ते होर दानी कौन होएगा। सत सगत बोलो श्री आख्या। और शुरवीरता तेरे विच किडी के चमकौर दी गड़ी विच जदों बेअंत दुश्मना दी फौजा घेरा पा के खड़ोतियां हुईयां, ते अंदर थोड़े जे सिख चमकौर दी कच्ची गड़ी, दो दो चार चार सिंह करके जाऊं बार, ते दुश्मना दे कई दलां दे दल नूं मार मुकाऊं, ते आप फिर शहीदियां पा जाऊं। उस वेले इस वेले बेअंत फौजां ने दुश्मन दी चमकौर दी कच्ची गड़ी नूं घेरा पा के खलारिया, ते आप घोड़े ते चढ़ के आवाज दे के गए कि हिंद दा पीर जा रहा, जे जे किसे विच हिम्मत होवे ता उसनु रोक के दसो। सत सगत बोलो श्री। अनेकां नू साहब जी दी तलवार त्या शो प्राप्त होई, दुश्मना दे सिर वाह के साहब जी उस चमकौर दी कच्ची कड़ी विच अगा लंघ गए, दुश्मन घेरे नू तोड़ छड़िया। तेरे वर्गा शुरवीर होर कौन हो सकता है, तेरे वर्गा भगत संसार विच कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरे वर्गा दानी कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरे वर्गा शुरवीर कोई नहीं। सत सगत बोलो श्री। इस वास्ते भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं, मुसव्वर खेंच ले तस्वीर ये तुझको रिसाई है, दसम गुरु बैठे मसलत पर सभा अपनी लगाई है, यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, मिला तुझ सा मुझे मुर्शद मेरी तकदीर अच्छी है। सत सगत बोलो श्री। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी उस्तत करदे हुए भाई साहब भाई नंद लाल जी

आप जी ने कई बार पढ़िया होगा, सारिया ही पंक्तियां एक एक अखर धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे जीवन ते

तन ते छिटकी अपनी धारी प्रभ की आग्या लगी प्यारी जो किस करे सो मन मेरे मीठा ता अचरज नैनो डीठा। जब ऐसी दशा सी ना एक महापुरुष कहिंदे उदों अकाल पुरख ने दर्शन दिते महाराज ने कहिंदे गोबिंद सिंह बेटा क्योंकि आप मैं अपना सुत तोहे निवाजा पुत्र बना के जो भेजा सी जी कहिंदे बेटा गोबिंद सिंह तू इम्तिहाना विचों पास हो गया है प्यार ना खो सतनाम सिंह मैं प्रसन्न हां मैं खुश हां ते कुछ मंग लै। आनंदपुर चाहिए ना जी पुत्र चाहिए कुछ नहीं चाहिए ते की चाहिए ते साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अकाल पुरख नूं कहिंदे ने जे त्रुठे हो मेरां दे घर विच आए हो जे बख्शां दे घर विच आए हो ना तां ए चीज दिओ जी।